रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

जा, कुछ चीजों की इजाजत खुदा भी नहीं देता है, इश्क में किसी बेवफा को कोई बद्दुआ नहीं देता है।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल की।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा

सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178।

3 Amarnath Ji Yatra 2026. Jai Baba Barfani.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं।

0: पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।
1: हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with RJ Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन
2: रेडियो चुनार।

0: अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, रेडियो चुनार। जी हाँ, रेडियो चुनार पर मस्तार शो, व्हाट्स अप जॉक्सियस के साथ। सही है मेरे यार,
1: वो

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। रेडियो चना 90.4 एफएम। डू फॉलो शेयर सब्सक्राइब रेडियो चना के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम ऐप पर मिल जाएंगे। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। यह याद रखिए, आपका प्यार बनाता है रेडियो चना को सही मेरे यार। आप लॉग इन कर सकते हैं www.radiochannel.com पर। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल से डायरेक्ट धड़का।

0: Kom her, ja.
1: Radio Chennai. Radio Chennai. Weather update. Weather update.
2: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मस्त

0: शो व्हाट्सअप रेडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं मेरे यानी जागसूस के साथ और व्हाट्सअप शो में ब्रदर आज का वेदर
1: रेडियो चैनल वेदर अपडेट।
0: जी हाँ, क्या है आज के मौसम में खास, क्या होगा खास, ये बकवास सब बताएंगे आपको
1: रेडियो चिना।
0: लेकिन उससे पहले बेटा सा यार दिलाना बनता है कि आपका फोन करना बनता है, क्योंकि आप ही तो वो जनता है जो धड़काते हैं हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM।
1: वेदर अपडेट
0: 8 9 9 9 0 4 9 0 4 नंबर SS88999 0 4 9 0 4।
1: रेडियो चिना वेदर अपडेट।
0: आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।
1: रेडियो चिना वेदर अपडेट।
0: आप डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, सर्च करें ज़ूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो। आज का मौसम क्या कहता है? यस, इट्स एन अवरकास्ट फॉर टुडे। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है कल के मुकाबले 2 डिग्री कम, इज 28 फॉर टुडे। बादल गरज बरस की संभावना और बीच बीच में सूरज भी जो है मुखड़ा दिखाएगा, बाहर तो आएगा, किधर जाएगा, समर सीजन है, छुप थोड़ी पाएगा। वेदर ऑल द टाइम कहते भाई जावेद अली बन जाते हैं हम। और फिलहाल अभी की बात करें तो हाल फिलहाल में ये बात है कि यूवी इंडेक्स वेरी वीक पर, ह्यूमिडिटी 81%, विंड स्पीड 0 किलोमीटर, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर।
1: रेडियो चिना।
0: आज का सनराइज हुआ 5:44 पर, आज का सनसेट होगा 7:31 पर। हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, मेरी हर सडे धड़का दे रहा।

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे,
2: व्हाट्सएप पे दोस्तों, रेडियो चैनल की हॉट फ्रीक्वेंसी पर वायरल ऑन व्हाट्सएप, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम आप तक पहुंचाते हैं हंसी खुशी भरा ये सेगमेंट। रोज हंसी के ठहाके बजते हैं लेकिन आज दिल उदास है। वायरल तो है लेकिन ये चीज शायद वायरल नहीं होनी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए था ऐसा कि हमें आपसे ये वायरल पोस्ट डिस्कस करना पड़ता, क्योंकि ये जो वायरल पोस्ट है इट्स फ्रॉम देहरादून और 27 साल की एक लड़की ने इस दुनिया से जाने से पहले एक वीडियो बनाया जहां पर उसने अपनी मां को सॉरी बोला। सॉरी इसलिए बोला क्योंकि वो झेल नहीं पाई, सॉरी इसलिए भी बोला क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और सॉरी इसलिए भी बोला क्योंकि जो हमने माइंडसेट्स बना के रखे हैं इस दुनिया में कि घर से निकलकर ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम्हें झेलना पड़ेगा, तुम लड़की हो बर्दाश्त करती रहो। खानदार छुती आदि शुभाना कह चुन पर तो वो उस चीज को झेल नहीं पाई और उसके चलते उसने एक वीडियो बनाया जहां पर लिखा सॉरी मामा मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब ऐसा भी नहीं है कि लड़की अनपढ़ थी, ना समझती, उसे दुनिया की समझ नहीं थी, बल्कि यह है कि 27 साल की एक स्कूल टीचर, एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो कि अच्छा खासा कमाती, इंडिपेंडेंटली अगर रहती तो शायद आज हमारे बीच होती, हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही होती, लेकिन 6 महीने पहले नवंबर में इसकी शादी हो गई। श्रिस्ती नाम है इसका, और शादी करके जब ये कहने वाले अपने

घर में गई तो वहां पर हर दिन इसे सताया जाता, मनहूस बोला जाता और मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया जाता है। रीजन आप समझ गए होंगे, हम सब जानते हैं, डाउरी। डाउरी जो इलीगल है, जिसकी मांग रखना या बात भी करना तो आप पर चार्जेस लग सकते हैं। लेकिन बात यह है कि एक इंसान, एक नन्ही सी लड़की, एक नन्ही सी जान जो ये गलती कर बैठी कि उसने दुल्हन बनने का सपना देखा, उसने एक ऐसे लाइफ पार्टनर को चुना जो उसके लिए स्टैंड ही नहीं ले पाया, जिसे इंसान से ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट था। एज अ सोसाइटी हमें सोचने की जरूरत है, हम कर क्या रहे हैं। देखिए, जगह जगह हेल्पलाइंस है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए। आप अगर दौड़कर भी एक आर्मी कैंप में जाए, कंप्लेंट लगाए, तो वहां पर मौजूदा ऑफिसर या कोई भी सैनिक आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन पहल आपने करनी है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हाँ, बात ही तो बोली है, कोई बात नहीं। हमारे दिमाग में ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज जो है हाथ उठाने पर ही होता है। लेकिन आप देखिए, किसी से बात करना छोड़ देना, किसी को मेंटली टॉर्चर, ये भी एक अब्यूज होता है। शायद मेरे लफ्ज कम पड़ रहे, क्योंकि हो जाता है, लेकिन बात समझने की है, बात समझदारी की है। बात एज अ सोसाइटी ये सोचने की है कि हम कर क्या रहे हैं। हम तो उठ के जी लगा देंगे, इस पर इल्जाम, उस पर इल्जाम, ये गलत है, वो गलत है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। लेकिन एज सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, ये पोस्ट वायरल है, व्हाट्सएप पर भी आ गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसे पोस्ट वायरल होने चाहिए? क्या कोई लड़की ऐसी जो सपने देखकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दे और 6 महीने के बाद ही अपनी जिंदगी खत्म कर दे? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हमें एज अ सोसाइटी इस चीज पर रोक लगाने की जरूरत नहीं? क्या हमें अपने गवर्नमेंट के साथ, हमारे प्रशासन के साथ खड़े होकर इस डाउरी सिस्टम को खत्म करने की जरूरत नहीं है? कहने को तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम एकजुट होकर खड़े हो जाए और ये डाउरी कल्चर जो है इस दुनिया से खत्म कर दे? इंसान इंसानों की तरह जिए। बात थोड़ी कड़वी है बट सच है। अब वायरल थी तो व्हाट्सएप पर आ चुकी है। रेडियो 90.4 FM, आप सुन रहे हैं मस्तार शो, व्हाट्सएप धड़काते रहो।

0: खुश नुमा तूने रहम किया मुझ पे करम किया
1: कुछ टाइम अकेले रह सकोगी वेट कर पाओगी मेरा

0: कौन आया?
1: दोस्तों रेडियो चैनल 90.4 FM आरतल की धड़कन शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में श्री अमरनाथ यात्रा 2026 अपडेट्स आपको बताते चलें। ये बहुत द रूट्स जो जाते हैं श्री अमरनाथ जी की पावन गुफा की ओर, बालतल और पहलगाम दोनों रूट्स जो है सस्पेंडेड है और हेवी मशीनरी जो है इस टाइम काम पर लगाई गई है ताकि रिपेयर का काम किया जाए। और साथ ही जो वेदर वार्निंग आई थी जिसके चलते बताया गया था देयर आर चांसेस के ओवरकास्ट हमें देखने को मिलेगा, आप समझ सकते हैं कि हाई एल्टीट्यूड के चलते वहां पर बारिश

और लैंडस्लाइड्स का खतरा ज्यादा रहता है, उसके चलते प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा है तो टीम रेडियो चनार आपके लिए चाहती है, दुआ है हमारी कि आपकी यात्रा संपूर्ण और सफल हो। और फ्रीक्वेंसी और दिल की धड़कन रेडियो चनार सड़े हक धड़काते

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, लव इज नॉट सो फार, यह इज रेजाइडिंग इन एवरी हार्ट। हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल, स्टे हक्ड, धड़काते रहो।

देन गज्जा को बोल कि आज रात को मिठाई का डिब्बा आएगा, कल सुबह तक ब्लू बर्ड को दिल्ली में डिलीवरी हो जानी चाहिए, दिल्ली में। समझ गया?

0: Jesus. कौन आया?
1: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चला 90.4 FM एंजॉय कर रहे हैं आप मस्तार शो. व्हाट्स अप? जी हाँ, व्हाट्स अप शो डियर डेरूम. प्यार और बातों से बनता है, और बातें जो आप हम तक पहुंचाते हैं, और प्यार जो परोसा होता है, आहा मजा आ जाता है. अब अपना प्यार पहुंचाने के लिए हम तक मेरे 9999904 इज द नंबर. ऐसी जगह है जहां पर जाना बनता है और जिनके बारे में जानना आपका हक है, क्योंकि भैया अपना इंडिया अगर नहीं घूमे तो कहां घूमेंगे. सो हियर इन जेम्स ऑफ इंडिया आज का टॉपिक, और इस टॉपिक के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई जगह जहां आप जा चुके हैं या जाना चाहते हैं हमें बताएं, हम तक अपनी बात पहुंचाएं, और हम पहुंचाएंगे वहां जहां जहां जाती है रेडियो चनार की आवाज. और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन मजेदार शो. व्हाट्स अप, मैं हूं जॉक्स, मेरे यार सिटी हक धड़काते रहो.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: to Zeus.
1: Kon aaya?
2: Zeus. Zeus.
1: Recently pura South India ghuma hu, ye maine kiya tha, keh rahi hai Shabnam. जी हाँ, घूमा हूँ. और शबनम लिखती है आगे कि भाई मैं आधे से ज़्यादा इंडिया देख चुका हूँ. वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस केरला. एंड दैट्स लाइक मोर ऑब्वियस, क्योंकि ऐसे ऐसे कुदरती नज़ारे जो केरला में देखने को मिलते हैं शायद ही कहीं देखने को मिले. दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो चुनाव 90.4 FM. शबनम आपका शुक्रिया. रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्स्यूस. आप हर दिल की धड़कन को धड़का रहे हैं अपनी बात हम तक पहुँचाने के लिए और धड़कन को जोरों से धड़काने के लिए 8899904904 इज द नंबर. 8899904904. जी हाँ, आज है हमारा टॉपिक हिडन जेम्स ऑफ इंडिया. त्रिथन वैली

0: जब हम इस वैली की बात करते हैं, इट्स अ क्वाइट प्लेस नेक्स्ट टू ग्रेट हिमालयस और नेशनल पार्क, और स्लो वॉक्स और ट्राउट फिशिंग के लिए जानी जाती है ये जगह। और वहीं से अरुणाचल प्रदेश जीरो वैली, जहां पर आपको मिलेगा एक वाइट राइस फील्ड, सॉफ्ट हिल्स और ग्रीन होम, जो आपको देगा कुदरत की बाहों में लिपटने का एहसास। हिमाचल प्रदेश में मौजूद संग्रह, एक टाइनी विलेज जो कि जाना जाता है फ्लैट ग्रीन मेडोज के लिए और टॉल पाइन ट्रीज के लिए। ये तो हुई माउंटेन्स एंड वैलीस्केप्स की बात। उसके अलावा अगर हम देखें तो कितने सारे यूनिक लैंडस्केप्स हैं जिनकी हिस्ट्री उनके साथ साथ चलती है। ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, जहां पर आपको डीप गॉज और पेना रिवर जैसे कुदरती नज़ारे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एक ओल्ड फोर्ट जो आपकी आंखों में बस जाता है। अब अभी सारा सुनेंगे या और भी बातें होंगी आप तक, और भी बात आप तक पहुंचाएंगे। रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन। आप बने रहें, सुनते रहें, हर दिल की धड़कन को धड़का दे रहे हैं। मैं हूं जॉक ज्यूस, यू स्टे हुक्ड, मेरी जान धड़का दे रहो।
1: पत्थर है वो मुझे रोक टोक

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्द
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक।

0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
3: Dead dogs, dead dogs, dead dogs, dead dogs, dead dogs, dead dogs.
4: Tech Talks with RJ Zeus.
5: I feel good. Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज जे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जाने मन का तो पता नहीं पर ये दिल बेकरार है क्योंकि रेडियो चिनार पे आपके विचार और मेरे विचार मिलकर शो हंगामा ड्रामा शुरू हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे अभी कैसे हंगामा हो रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आपके लिए जो सोशल मीडिया जो भी वीडियोस हैं जो कुछ भी एक्स्ट्रा अदर देन दीज शोज होता है उसको संभालने के लिए कोई ना कोई आरजे तो चाहिए, कोई ना कोई आरजे कभी ना कभी जाता है। तो आरजे देवा की बात करें, शी इज आउट देयर टू रिकॉर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो फॉर यू गाइज। एंड अभी 12 से शुरू होगा हंगामा क्योंकि चिनार बीच तो आज नहीं होगा और होगा हंगामा भरपूर।

यहाँ फॉरएवर वादा हमने किया था कि कल मैंने वादा किया था कि 2 से 4 रेडियो चैनल पे हंगामा होगा, जो कि हमेशा होता ही है, बट आज मुझे मौका मिला कि जल्दी आके हंगामा करें, तो क्यों नहीं। अब देखिए, जो शो सुनते हैं मेरा, उन्हें ये मालूम है कि आते आते एक परंपरा चालू है हमारी। थोड़ा सा क्यों, पूरा हंगामा, ड्रामा, इन्फॉर्मेशन, क्या बजिंग है, और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है। शो शुरू हो चुका है हंगामा, कहाँ तक चलेगी बात वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ, बट फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए ओनली ऑन द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM। बस यूं कहिए और यूं वापस आए।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जी हाँ, हंगामा कुछ देर पहले शुरू हुआ है और आज मुझे मौका मिला कि मैं जल्दी हंगामा करूँ, तो क्यों नहीं, क्या मसला ही है। बट अभी की बात करें, अभी हम बात करने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में क्या चल रहा है, चाहे एक्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कौन सी रील, कौन सा मीम लोग देख रहे हैं, रीपोस्ट, लिप सिंकिंग, डांस रील्स, क्या क्या हो रहा है। और आज एक एक्टर, और सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियन है वो, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, टेलीविजन पर्सनालिटी हैं, उनका एक अतरंगी अंदाज काफ़ी ज़्यादा मीम्स में बदल रहा है। बट ऐसे मीम्स नहीं कि कुछ फन या कोई किसी को ट्रोल कर रहा है, बल्कि बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फनी और बहुत ही क्रिएटिव मीम्स। मैं बात कर रही हूँ रवि किशन जी की, जिनका पूरा नाम रविंद्र किशन शुक्ला है। वो एक्चुअली पहले तो वो बिहार के रहने वाले हैं, बट बिहार का जो सिनेमा है वहाँ पे उन्होंने अपना नाम कमाया, उसके बाद बॉलीवुड, उसके बाद उन्होंने टॉलीवुड में भी काम किया है और अभी टेलीविजन में भी उन्होंने काम किया है। अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। बट जो अभिनेता है ना, जो एक्टर का जो वो आर्टिस्टिक फन होता है, वो कभी दिल से जाता नहीं है। इन्होंने पहले, इनके बारे में बात कर लेते हैं, इन्होंने लापता लेडीज़ में काम किया है, जो इनकी रीसेंट मूवीज़ रही हैं 2023 में, लापता लेडीज़, 24 में मामला लीगल है, रेस्ट गुरम, इट इज़ टॉलीवुड मूवी, जो अल्लू अर्जुन के साथ, माँ बहन 2026 में इन्होंने पार्ट लिया है, दैट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ हिज ओल्ड करियर, धमाल 4, सन ऑफ सरदार 2, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट निभाया, एक ऐसा पार्ट निभाया जहाँ पे एक्चुअली उनकी एक्टिंग की, उनकी आर्ट की तारीफ की गई। बट अब देखिए, उनका जो अंदाज है वो काफी निराला है, और उनके एक पॉडकास्ट का एक स्टेटमेंट, उनके एक प्रमोशन इवेंट का एक डांस काफी वायरल हो रहा है अभी एवरीवेयर ऑन द मीम कल्चर, देयर इज रवि किशन। मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज, ये स्टेटमेंट उनका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, और अभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई इनका जो अंदाज कुछ डिफरेंट है जैसे ये डांस करते हैं, एंड ये गाना इनकी एक्शंस, इनके स्टेटमेंट, इनके डांस के साथ काफ़ी रिलेट किया जा रहा है। You should see कि कैसे मीम्स बन रहे हैं भाई, क्रेजी, बहुत ही फनी, एंड यू शुड चेक इट ऑल्सो। मैं हूँ अस्रा, सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 एफएम, ये है हर दिल की धड़कन। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई, बिकॉज टू द अदर साइड ऑफ द ट्रैक्स देर आर अपडेट्स। मैं हूँ अस्रा, सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 एफएम, मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना

0: दूं गाना बजा दूं गाना बजा दूं बजा दूं आजा बेबी आजा
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
2: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM
3: Hi, मैं हूं असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM पे शो हंगामा ड्रामा एंटरटेनमेंट और क्या क्या नहीं होता है यहाँ. बट देखिए हर दिन का एक टॉपिक होता है, अपडेट्स होती हैं, वो सब आप तक पहुंचेगा बट कुछ ही ट्रैक्स के बाद. एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर देन यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो. 8899904904 नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज और अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए.
4: डूबे जाए ऐसा पहली बार हुआ है कि राजा बिना फूके ही हो गया है.
3: मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. और देखिए अभी कुछ देर पहले शो शुरू है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपके साथ करनी है और आप भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं.
5: कहाँ चुप के तू बैठी जरा दे बता, आई भर के जवानी तेरी बॉडी में.
3: एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जो आपको कुछ ट्रैक से बाद पता चलेगा, पर अभी के लिए रेलवे अपडेट्स ऑन योर डोर। जो भी लोकल सर्विसेज ट्रेन्स हैं बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन रेलवे लिंक की, वो सारे एज पर शेड्यूल हैं रिलेटेड टू समर टाइम टेबल, जो आप अवेल कर सकते हैं ऑफलाइन भी रिस्पेक्टिव रेलवे स्टेशंस पर, या आप ऑनलाइन रेल वन ऑफिशियल ऐप से वो समर टाइम टेबल अवेल कर सकते हैं। और जैसा कि 31 जुलाई से 14 अगस्त तक जो 3 ट्रेन्स डिले नहीं बल्कि कैंसल्ड हैं उनके बारे में मैं रेगुलरली बात कर रही हूँ अपने शो में, ताकि आप अवेयर रहें और आप अपना जो शेड्यूल है वो अकॉर्डिंगली बनाएं और अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर हमेशा एक जहां भी आप जा रहे हैं, इफ यू हैव योर रिस्पेक्टेड स्टेशन इज सोपोर, बारामूला, मासुमा, हामरे, पटन, जो कोई भी है, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंचे, सो दैट देयर इज नो डिले और नो ऑलमोस्ट आई कॉट द ट्रेन वाला मूवमेंट। और इसके अलावा भी जब भी आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं, देयर आर अपने एक सिविक सेंस का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ट्रेन आती है, अराइव होती है या डिपार्ट होती है, उस टाइम पे भी एक पर्टिकुलर सेफ्टी गाइडलाइन लाइक अप्लाई करना और फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि सवारी अपने सामान की और खुद की, खुद जिम्मेदार है।

अरे वेलकम बैक जी, द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है हंगामा। Definitely, girl, you do well. And today we are talking about the girls, the crazy and like talented girls, and moreover, the courageous girls who actually want to travel the world alone. आज हम solo female travelers के बारे में बात करेंगे. क्या facts हैं? क्या actually stereotypes भी हैं? और actually क्या struggles रहते हैं? क्या safety concern? अगर आप भी चाहते हैं कि आप solo travel करें, दुनिया देखें, क्योंकि हमेशा आपके साथ लोग नहीं होंगे जो आपके साथ exactly same plans शेयर करते हो, तो एक पॉइंट पे ऐसा सोचता है कि भाई मैं खुद क्यों नहीं जा सकती, मैं खुद चली जाती हूँ। और अब दुनिया क्या भी कहे, एक चीज जरूर है कि हम जीना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, जमाना क्या कहेगा वो आपस में ही वो डिसाइड कर लेंगे, हमारा वो काम नहीं है। बट अभी का हम ये काम है हमारा कि आप तक पहुंचाएं कि अगर आप सच में सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने ये किया है, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स ऑफ इंडिया, दे हैव डन इट, दे हैव प्रूव्ड इट, बीन देयर डन दैट। उसके बारे में भी बात होगी, कौन से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं और सेफ्टी मेजर्स क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर रखनी है प्रायर इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ सोलो ट्रैवल थिंग, ईदर वन टाइम और मल्टीपल टाइम्स, और क्या स्ट्रगल रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात होगी। फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैक्स के बाद रेडियो सुनार देता है सबसे ज्यादा। मैं मोस्ट्रा सुनते रहिए रेडियो सुनार। We're not leaving,

0: मैं हूँ आरजे सूर।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

शो है हंगामा एंड यू हैव ट्यून्ड इन टू द हॉरर फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम. और जैसा कि आज हम सोलो फीमेल ट्रेवलर्स के बारे में बात कर रहे हैं, एंड स्पेशली बात अगर करें तो पहले ऐसा नॉर्म था कि अकेली लड़की घूमने जा रही है, बाहर जा रही है, क्यों जा रही है, क्या जरूरत है. बट अभी की बात करें तो ये दिस इज अ सेल्फ फ्रीडम, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कि आप कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम खुद कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट होकर घूम सकते हैं, आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है. और अगर हम फैक्ट

0: चेक करें। देखिए अपना होमवर्क डन होना चाहिए। अभी की बात करें तो ये जो मार्केट है सोलो ट्रैवल बाय वुमेन एंड स्पेशली इंडियन वुमेन, इट हैज ग्रोन बाय 9 times, हर साल 9 गुना 10 गुना ज्यादा। इन सब चीजों पे और ज्यादा इजाफा हो रहा है। लोग स्पेशली वुमेन आर बुकिंग द टिकट्स हो या होटल्स हो या वट एवर इट इज देयर दैट कम्स इन ट्रैवल, चाहे आप खुद ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो 10 गुना चीजें बढ़ चुकी हैं। एंड स्पेशली बात करें तो ये जो डायनमिक्स है, जो ये डायनमिक शिफ्ट हुआ है कि लड़कियां खुद ट्रैवल करें, ये 40% से ज्यादा नई जनरेशन दैट इज जेन जीज ने स्टार्ट किया। कि जो जेन जी वुमेन है दे वांट टू ट्रैवल अलोन, दे डू नॉट वांट कि मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए। और सिर्फ सपोर्ट की बात नहीं है, कभी कभी सच में ऐसा होता है कि आप कहीं जाना चाहते हैं बट आपके साथ कोई जो आपके फादर होते हैं, ब्रदर, हस्बैंड या कोई भी ऐसा आपका पार्टनर होता है, वो अवेलेबल नहीं है। तो आप हमेशा उनका वेट नहीं कर सकते, आप जाना चाहते हैं और आप खुद की जिम्मेदारी पर जाना चाहते हैं। और एज पर द रिसर्च, एज पर द जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं आजकल रिलेटेड टू सोलो फीमेल ट्रैवलिंग, ये कहा जा रहा है कि जो भी लड़कियां जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज करती हैं अपना ट्रैवल। ऐसे अचानक से एक दिन उठ के और बोला कि नहीं अब हम घूमने जाएंगे, आज हम घूमने जाएंगे, वैसा नहीं होता। बल्कि प्रायर 2-3 दिन पहले जो लड़कियां हैं ये माना गया है कि वो अपना सेफ्टी प्लानर, अपना प्रायर रेडी होना, क्या करना है, कहां से क्या होना चाहिए, सब कुछ बुक्ड रखती हैं ताकि जो सेफ्टी के जो चांसेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। और सबसे बड़ी बात अगर हम बोले जो इंस्टीट्यूशनल चीज़ें होती हैं, यानी कि जो अथॉरिटी ने लड़कियों के लिए किया है, दैट इज़ कि बहुत सारे ऐसे होटल फ्लोर्स रखे गए हैं, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी चेक्स रखे गए हैं, ओनली वुमेन ट्रेन, ओनली वुमेन मेट्रो कोचेस, ट्रेन कोचेस में, या ऐसी अगर बसेस की बात करें जो स्लीपर कोचेस यहाँ से बाहर जाती हैं या बाहर भी लाइक बाकी स्टेट्स में भी स्लीपर कोचेस का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर वुमेन ओनली वुमेन डेडिकेटेड सीट्स रहती हैं, ओनली वुमेन डेडिकेटेड बर्थ्स रहती हैं। और अगर हमारी लोकल ट्रेन की भी बात करें, जो कश्मीरी लिंक है, कश्मीर लिंक, रेलवे लिंक है, उसके बारे में बात करें, तो वहां भी एक पर्टिकुलर 2 कोचेस होते हैं जो स्पेसिफिकली दे आर फॉर वुमेन। एंड आई बिलीव एंड आई पर्सनली, अगर मैं अपनी बात करूँ, इट्स माई परस्पेक्टिव लाइक एन ऑडियंस, अगर देखा जाए एज अ सोलो ट्रेवलर वुमेन, आई वुड से कि ये बहुत अच्छी चीज़ है लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर रेलवे लिंक की बात करें तो बहुत सेफ महसूस होता है। और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो एक्चुअली पसंद करती हैं कि मैं हम वुमेन ओनली कोचेज में बैठें या वुमेन ओनली सीट्स जो होती हैं वहाँ पर बैठें, एंड दैट्स वेरी नाइस। और क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास, सो आगे भी बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शन है फॉर आर सेफ अगर हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं। बट फिलहाल के लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट का डोज।
1: तेरे तो मेरी ना नजर लेंदी तेरे तो।
0: मैं मुस्तफा सुनते रहिए रेडियो सुनार और एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स। मैं बस यूं कही और यूं वापस आई।

मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 एफएम।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 एफएम. शो है हंगामा एंड टॉपिक है सोलो ट्रैवलर्स, सोलो फीमेल ट्रैवलर्स. और अगर सेफ्टी की बात करें तो सबसे पहले एक लड़की अपनी सेफ्टी के लिए ये कर सकती है कि जो भी ऑथराइज सिक्योर एप्स हैं उन पर रिले करे रादर देन जो आसपास लोग हैं. आप अगर स्पेशली अगर नाइट टाइम है, इवनिंग का टाइम है, तो ऊबर, ओला या रैपिडो, अभी श्रीनगर में रैपिडो भी शुरू हो चुका है. सो आपको लोकल स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा अगर आप जो सिक्योर एप्स हैं, यहाँ पे जो भी ड्राइवर हो, जो भी सर्विसमैन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है. सो दैट इज मोर सेफर देन द लोकल स्ट्रीट ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा आप जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स हैं वो याद कर सकते हैं, या जो इमरजेंसी लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, लोकल पुलिस जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके, वो आप याद रख सकते हैं, सेव रख सकते हैं, रैपिड डायल पे, स्पीड डायल पे रख सकते हैं, ताकि वेन एवर गॉड फॉरबिड इफ़ यू आर इन अ सिचुएशन वेर यू नीड हेल्प, वहाँ यू विल गेट हेल्प एज सून एज पॉसिबल. इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो आपका लाइव लोकेशन है, सेंड इट टू सम ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट या अपने फैमिली मेम्बर्स में से, एंड कीप योर फोन ऑलवेज चार्ज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास पावर बैंक है, कीप पावर बैंक विद यू फुली चार्ज, चार्ज योर फोन फुली एंड कीप योर पावर बैंक विद यू. पेपर स्प्रे इज एन एडिशनल बेनिफिट जो आप अपने साथ रख सकते हैं फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी. एंड इसके अलावा आप एयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन इफ आप म्यूजिक सुने या ना सुने, एयरफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप एयरफोन्स लगा के देर इज लाइक 90% चांस है कि आपके साथ फिर कोई भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दे विल फील लाइक यू आर अनअवेलेबल. सो दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी. इसके अलावा अगर बात करें कि आपको लाइक कल्चर बेंडिंग के, ब्लेंडिंग के लिए, ताकि आप दिखो ना किसी को, या इन द सेंस कि व्हाट आई मीन इज लाइक यू हैव टू ब्लेंड इन पीपल सो दैट यू डोंट कम आउट लाइक एन ऑड वन, ताकि आप सेफ रह पाए. अगर ट्रेडिशनल आउटवेयर है, ट्रेडिशनल पहना जाता है लोकली कल्चरल अप्रोप्रिएशन के लिए, देन आप वैसे ही ट्रेडिशनल चीज़ें पहन सकते हैं. या इफ़ इट इज़ फाइन टू वेयर वेस्टर्न क्लोथ्स एंड दैट इज़ द नॉर्मल थिंग अराउंड, यू शुड वेयर समथिंग लाइक दैट टू फिट इन एंड टू बी अन लाइक नॉट टू पोक आउट फ्रॉम ऑल ऑफ द ऑडियंस. इसके अलावा आप

0: हेडफोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पहले भी मैंने आपको बताया, टू अवॉइड स्ट्रीट कॉन्वर्जेशंस, ताकि आपसे लोग बात ना करें. और आपकी जो भी शेड्यूल है, जो भी ट्रैवल है, वो यूजुअली अगर आप लोकल जा रहे हैं, इंटरसिटी जा रहे हैं या लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो अवॉइड नाइट का टाइम, इवनिंग का टाइम. इट्स बेटर कि यू टेक प्रिकॉशंस फॉर योरसेल्फ सो दैट यू टेक द फुल एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रैवल और आपको अच्छा भी लगे एंड यू विल ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.
1: Gursidu music. The lovely queen. Let's go.
0: देखिए, हम कुछ ट्रैक के बाद अब इस बारे में बात करेंगे, कौन से ऐसे इंडियन क्रिएटर्स हैं, फीमेल क्रिएटर्स, जो एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं और जिन्होंने ये बार सेट किया है कि एक लड़की सोलो ट्रैवल कर सकती है. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार. फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स एंड दिस ट्रैक इन द वॉइस ऑफ जैस्मीन सैंडलेस, वन ऑफ माई फेवरेट. शी सिंग्स सो नाइस. एंड बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जैस्मीन सैंडलेस के, जो सिर्फ और सिर्फ धुरंधर के एल्बम से नहीं, बल्कि तब से जानते हैं जब से इलीगल वेपन का ओजी म्यूजिक आया था. मैं हूँ आस्था, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM.

जी हाँ, हंगामा है पर टॉपिक और इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट भी है. और आज का टॉपिक है सोलो फीमेल ट्रेवलर्स फ्रॉम इंडिया. और हमने सेफ्टी के बारे में बात की, हमने बात की कि क्या प्रायर हमें चीज़ें तैयार रखने की ज़रूरत है. हमने ये बात की कि क्यों जो नंबर ऑफ सोलो ट्रेवलिंग बुकिंग्स है बाई फीमेल्स वो बढ़ चुका है इन इंडिया, और क्या क्या चीज़ें हमें एज लाइक जो अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट हमें फराम करता है, जो इंस्टीट्यूशन चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, ज्वाइंट हो, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं. बट अभी बात करते हैं कुछ ऐसे स्टोरी टेलर्स, जो कंटेंट क्रिएटर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर्स कहें आप, ट्रैवलर्स कहें आप, व्लॉगर्स कहें आप, बट उनकी वजह से ये चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं. पहले बात करते हैं तानिया कानेजो की, जो एक्चुअली बहुत ही लाइक लार्ज स्केल पे उनका जो यूट्यूब चैनल है, शी हैज़ अराउंड लाइक मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, और उनके जो व्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी सच्चाई बेस्ड होते हैं. काफ़ी रिसर्च करती हैं वो आसपास जहां वो जा रही हैं, वो आइटनरीज दिखाती हैं कि कैसे उन्होंने कितना स्पेंड किया. और अगर आप यू वॉन्ट टू ट्रैवल सोलो एज अ फीमेल ट्रैवलर, सो आप कितना लाइक रियलिस्टिकली कितना बजट हो सकता है, और बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, इन सोलो ट्रैवल्स के बारे में अक्रॉस इंडियन स्टेट्स. इसके अलावा आकांक्षा मोंगा, जो एक्चुअली एक जेन जी वुमेन ट्रैवलर है, एंड शी टॉक्स अबाउट कैसे ट्रैवल हैक्स के बारे में, बजट फ्रेंडली ट्रैवल हैक्स या कॉस्ट को ब्रेक डाउन करना, और जो भी सेफ्टी रूल्स है वो एक्चुअली टेस्ट करती हैं कि अगर आप डोमेस्टिक सोलो फीमेल ट्रैवलर हैं तो क्या एक किसी पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप जा रही हैं तो आपको वो सेफ्टी जो नॉर्म्स हैं वो आपको वहाँ देखने को मिलते हैं कि नहीं. इसके अलावा दो और नाम हैं जो एक्चुअली बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लाइक फॉर द फीमेल, फॉर इवन नॉट जस्ट फॉर द फीमेल बट फॉर पीपल हु रियली वांट टू ट्रैवल. राधिका नोमलर्स, ये उनकी चैनल का नाम है, बट उनका नाम राधिका शर्मा है, जो एक्चुअली लाइफस्टाइल कंटेंट बनाती हैं एंड माउंटेन्स के जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन हैं इन हिमाचल या उत्तराखंड वो एक्चुअली वो कवर करती हैं. एयरबीएनबीज हों, हॉस्टल्स हों, वुमेन फ्रेंडली हॉस्टल, होम स्टेज, उनको कवर करती हैं. अगर दूसरी बात करें लरिसा डिसा, उनके बारे में बात करें तो वो एक सिनेमैटिक कंटेंट क्रिएटर है. बहुत ही खूबसूरत उनका तरीका है कि वो कैसे अपने व्लॉग्स, अपने जो सोलो लग्जरी एक्सपीरियंसेस को अक्रॉस इंडिया शेयर करती हैं. इसके अलावा बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली ट्रैवलर्स भी नहीं बट ब्लॉगर्स हैं, यानी कि दे राइट अबाउट थिंग्स, दे राइट अबाउट

इको फ्रेंडली टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, होम स्टेज, और एक लाइक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली ब्लॉगिंग करते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं बाय राइटिंग देयर एक्सपीरियंस. और सबसे बड़ा नाम जो इसमें आता है, दैट इज़ राइडर गर्ल विशाखा, जिनका पूरा नाम विशाखा फुलसंगे है. और शी इज़ इंडियाज फर्स्ट फीमेल मोटो व्लॉगर, यानी कि वो मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करती हैं और अपना जो पूरा टूर है उसका व्लॉग बनाती हैं. एंड दैट इज़ सो अमेजिंग टू डू. ऑनेस्टली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं फीमेल जो एक्चुअली हु आर डूइंग इट, एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल मोटो व्लॉगर. दैट इज़ अ वेरी बिग टाइटल टू हर. एंड देर आर अदर एस्पेक्ट्स एंड एक्सपर्ट्स टू इट, जो एक्चुअली लाइक व्लॉग्स नहीं बनाते बट एक्चुअली दे राइट बुक्स अबाउट इट. जैसे प्रतिक्री और शरण्या, ये लोग अब जो हैं ये ऑथर्स हैं, दे एक्चुअली राइट अबाउट ट्रैवल, वॉट कैन यू डू, एंड इफ़ यू आर विजिटिंग हाई ऑल्टीट्यूड प्लेसेस वॉट कैन यू डू देयर, एवरी थिंग अबाउट ट्रैवल. एंड देर आर सो मेनी पीपल, ये तो कुछ ही नाम है जो सामने आते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली अभी ट्रैवल को एंड स्पेशली सोलो फीमेल ट्रैवल को तरजीह देते हैं. अब बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है, क्या आप कहीं जाना चाहते हैं वो भी सोलो हुआ? मैं तो पहाड़ों पे जाना चाहती हूँ, वही बस वो फीलिंग आती है ना, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाता है ना, क्लाउडी सा, तो बस एकदम वो फिर से वही फीलिंग कि पहाड़ों पर जाना है.

जरूरी है कि हम अपने प्लान्स बनाएं. और आज का टॉपिक काफी अच्छा था, काफी एनलाइटनिंग था हमारे लिए कि हम भी अपने लिए कुछ करें. जैसे कि मैं हमेशा शो के एंड पे कहती हूँ कि कुछ ना कुछ क्रेजी करते हैं, कुछ तूफानी तो नहीं करते, वो थम्स अप का है, बट कुछ ना कुछ क्रेजी जरूर करना चाहिए. और अभी की बात करें तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने लिए कुछ करें. चलिए देखिए, अब आप और मैं तो एक साथ नहीं रह सकते, बट एटलीस्ट हम एक दूसरे को मोटिवेट ज़रूर कर रहे हैं. और स्पेशली आज मैं तो बहुत मोटिवेटेड महसूस कर रही हूँ इतने सारे नाम सुन के और कैसे क्या करना है. और डेफिनेटली आप भी ऐसे सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट ट्रिप कौन सी प्लान कर रहे हैं, हमें भी बताइए. 8899-0904 इज नंबर. अपनी नेक्स्ट सोलो ट्रिप का प्लान हमें भी बताइए. मैं मास्टर सुनते रहिए रेडियो सुनार. और कुछ ही ट्रैक से बाद शुरू करेंगे एक नया शो, एक नया सेगमेंट. तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए ओनली ऑन द हॉरस फ्रीक्वेंसी.

हाय माय वास्तव शुरू हो चुका है शो म्यूजिक ऑन डिमांड, जहां मिलती है आप आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो होती है पूरी जो म्यूजिक इस म्यूजिकल जर्नी में. आप अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं. 8899904904 इज नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप, और जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी आप सुनना चाहते हैं, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं या आप खुद सुनना चाहते हैं, खुद को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो बस फ़ोन उठाना और हमसे बात करनी है, बताना है कि कौन सा ट्रैक आप सुनना चाहते हैं. और आज 1:30 से लेकर 2:30 तक म्यूजिक ऑन डिमांड चलेगा, तो स्टे ट्यून टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम. अब देखिए, अब गाने की बात हुई है तो कुछ तड़कता फड़कता तो बनता है. Enjoy the back-to-back tracks और अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाइए, बिकॉज दिस इज म्यूजिक ऑन डिमांड और मैं हूं आरजे अस्रा.

डिमांड. जी हाँ, म्यूजिक ऑन डिमांड चल रहा है और हमारी एक पहली रिक्वेस्ट आ चुकी है. रुतबा जो सोपोर की रहने वाली है, वो सुनना चाहती है ये गाना. मानना पड़ेगा रुतबा की चॉइस इज वेरी एक्टिव फॉर द आफ्टरनून. आई होप कि इस गाने से सब जाग जाएं जिन्हें आफ्टरनून में बहुत नींद आती है. देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट फिर भी एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो टुनाइट. एंड आप भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं 8899904904 पर, और जल्दी से बन जाइए शो का हिस्सा.

वेलकम बैक टू शो म्यूजिक ऑन डिमांड, जहां होती है आपकी म्यूजिकल रिक्वेस्ट्स पूरी। ये एक म्यूजिकल जर्नी है जहां पे आप हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं कि आप चाहते क्या हैं और फिर हम वो प्ले करते हैं। और अभी की बात करें तो आयशा खान की रिक्वेस्ट आई है, शी इज फ्रॉम सोपोर। उन्होंने कहा है कि वो सुनना चाहते हैं चाइना गेट का ये गाना। उर्मिला मातोंडकर का जो जलवा था, आई वुड लाइक टू टेक अ पॉज फॉर दैट, क्योंकि वो जिस तरीके से ड्रेस करती थी और ड्रेस करने के साथ साथ परफॉर्म एक्सप्रेशंस, ओ माय गॉड। अलका याग्निक की आवाज में ये ट्रैक आप सब के लिए, एंड दिस इज फ्रॉम द मूवी चाइना गेट। मैं वास्ता सुनते रहिए रेडियो सुनार, और आप भी अपनी रिक्वेस्ट, अपने जो आप जो सुनना चाहते हैं, अपने वॉन्ट्स एंड नीड्स हम तक पहुंचा सकते हैं। 8899904904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। मैं वास्ता, मैं बस यू पे योर युवा बसाई।

वेलकम बैक टू शो म्यूजिक ऑन डिमांड. और अभी की डिमांड कुछ डिफरेंट है. इट्स फ्रॉम एहसान बट वो दबगा के रहने वाले हैं. उन्होंने कहा है कि वो सुनना चाहते हैं ये गाना.

भाई सब चंगा सी, बट आप बताइए कि आपका क्या हाल है और आपकी क्या रिक्वेस्ट है। 8899049904 इस नंबर आप भी एहसान की तरह फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, शो है म्यूजिक ऑन डिमांड। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

You have tuned into the hottest frequency of North Kashmir, Ravi Show chal raha hai, Music on Demand. Music on Demand, जहाँ आप अपनी म्यूजिकल रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाते हैं और आपकी म्यूजिकल रिक्वेस्ट इस म्यूजिकल जर्नी में हम पूरी करते हैं. और मैं आज आरजे असरा 12 से लेकर बराबर अभी भी यहीं पे हूँ. 12 बजे हमने शो शुरू किया था हंगामा.

अब बहुत मज़ा आया बीडू, बट अभी की बात करें तो अभी म्यूजिक ऑन डिमांड चल रहा है और हमारे पास रिक्वेस्ट आई है सदफ से। सदफ दोबगा से रहने वाली हैं और उन्होंने कहा है कि वो सुनना चाहती हैं ये गाना। जुगनी नाटी है और नखरे वाली है, बताइए सदफ आप कैसी हैं? उन्होंने कुछ बताया नहीं है इसके अलावा, बट आई अज्यूम कि अगर आपका म्यूजिक टेस्ट ऐसा है तो एकदम चटक और चटपटा अंदाज है आपका। मैं हूँ अस्ट्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 एफएम, म्यूजिक ऑन डिमांड अभी ढाई तक चलेगा, तो आप अभी भी अपनी रिक्वेस्ट हम तक मैं पहुंचा सकते हैं। मैं हूँ अस्ट्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार, एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स और अब शेयर कीजिए अपने विचार, विचारों से बताए प्यार, तभी तो हम है रेडियो सुनार, सही मेरे यार।

हाय, मैं हूँ अस्ट, आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम, शो चल रहा है म्यूजिक ऑन डिमांड। अब देखिए, अभी की रिक्वेस्ट कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नहीं है, बस शगुफ्ता हैं जो सुपौर की रहने वाली हैं, उन्होंने कहा है कि असरा दीदी कुछ रोमांटिक सा सुनाइए, कुछ प्यार भरा, कुछ ऐसा कि जिससे हमें उन लोगों की याद आए जो हमारे साथ अभी नहीं है शायद। बट इतना दुख, इतनी इतना दुख क्यों है आपके साथ? इश्क वाला, देखिए प्यार की बात करते हैं, बट पॉजिटिव ही लूंगी मैं इस मैसेज को कि वो कुछ ऐसा सुनना चाहती हैं जहाँ पे उनका जो प्यार है वो रिवाइव हो जाए। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी बेटर सॉन्ग देन दिस ट्रैक। आई थिंक ये ट्रैक ऐसा है जो एग्जैक्टली एक्सप्लेन करता है जब आपको पहले पहले प्यार होता है तो कैसा लगता है आपको। और आप भी बताइएगा कि अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है।

भी है हमसे भी शेयर कीजिए। देखिए मुझे ऐसी चीज़ों में बड़ा मजा आता है। मैं मोस्ट टाइम सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM, शो है म्यूजिक ऑन डिमांड, बैक टू बैक ट्रैक्स चलेंगे और आपके पसंदीदा ट्रैक्स चलेंगे। मैं हूँ अस्टा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूँ कही और यू वापस आए।

नहीं, क्योंकि जाना कहाँ है मुझे 12 बजे से, भले ही मैं 12 बजे से, देखिए बाबा 12 हो रहा है क्योंकि अभी 2.5 घंटे से मैं आपके साथ बात कर रही हूँ. सो, अभी देखिए 12 से लेकर 2:30 तक बहुत कुछ हुआ, हंगामा हुआ, म्यूजिक ऑन डिमांड हुआ, बट कुछ ही ट्रैक्स के बाद एक नया सेगमेंट शुरू करेंगे हम. अब वो किस बारे में है, क्या है, वो तो आपको कुछ ट्रैक्स के बाद ही पता चलेगा. फिलहाल के लिए इंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स, क्योंकि असरा यही है, कहाँ जाएगी असरा. और दूसरी चीज ये भी है जो आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस शो. 8899049904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स, व्हाट्सएप. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 FM और ये है शो हंगामा, और बराबर चार तक आपका और मेरा साथ रहता है। और आज की स्पेशल बात ये थी कि आपका और मेरा साथ शुरू हुआ था बराबर 12 बजे और 12 से 4 हम साथ में रहेंगे। मैं हूँ असरा, सुन रही है रेडियो सुनार 90.4 FM एंड दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ द शो। 8899994904 इज नंबर यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े

छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम शो हंगामा। बराबर 12 बजे शुरू हुआ था म्यूजिक ऑन डिमांड, सो मेनी थिंग्स अपडेट और बहुत सारी बातें की हमने और आपने भी अपने विचार हमसे शेयर किए। मैं हूँ असरा, सुन रही हूँ रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और अभी दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर दैट यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस शो। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ध्यान से ड्राइव कीजिए, ट्रैफिक SOPs को फॉलो करना ना भूलें और अपना ख्याल रखना ना भूलें। क्यों, और कुछ ही ट्रैक के बाद हम गेम ऑन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे, जहां आपको स्पोर्ट्स के का जो अपडेट है, चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल हो, वो स्पोर्ट्स अपडेट आप तक पहुँचती है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कहीं और नहीं मिलते। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM। मैं बस यूं कहीं और यूं वापस आई।

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM. 0.4 FM.
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना।
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल ले।
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. 4 FM.
2: Welcome back to Show Hangama. Only on Radio Chennai 90.4 FM. शुरू हो चुका है Game on.
3: Have it.
4: बेबी नी बेबी तेरी अख दे वे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच दे वे डोपामीन, कैरां तो लंघदियां वट वट कूरियां, सानू तू बिल्लो हस हस दे वे डोपामीन।
2: गेम ऑन याने की स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे लोकल नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अपडेट हो, कुछ फैक्ट्स और कुछ ही ट्रैक से बात बात करेंगे कि आज का प्राउड इंडिया मोमेंट क्या है।
4: बेबी नी बेबी तेरी
2: अख दे वे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच दे वे। मैं वसरा सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूं कही और यूं वापस आए।

The game is on. Tune into Radio Tuna 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Tuna 90.4 FM. Welcome back to Show Hangama Game On A Segment. और अभी की बात करें तो आज का जो गेम ऑन में अपडेट है दैट इज नीरज चोपड़ा एंड यशवीर सिंह दे हैव वन सिल्वर एंड ब्रोंज रिस्पेक्टिवली इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2026. यानी कि भाई साहब तीन में से दो मेडल हमारे यहाँ ही आए हैं एंड सीजन का बेस्ट थ्रो मिला है नीरज चोपड़ा एंड ऑफकोर्स वी नो दैट ही इज इंडियन एथलीट. और अगर बात करें गोल्ड की वो रुमेश तरंगा उन्होंने जीता है. ही इज फ्रॉम श्रीलंका एंड उनका जो थ्रो था 89.75 मीटर्स का था एंड ही इज़ द फर्स्ट एथलेट जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने गोल्ड जीता है. देखिए क्रेजी चीज़ें तो हो रही हैं बट इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है मुझे कि कहते हैं ना कि घर आए हैं दो मेडल्स सिल्वर एंड ब्रोंज एंड दैट इज रियली रियली नाइस. दैट्स रियली यू नो समथिंग टू बी प्राउड ऑफ समथिंग टू बी रियली हैप्पी अबाउट एंड समथिंग टू से कि भाई हाँ हमारे यहाँ के एथलीट्स किसी से कम नहीं है. अब देखिए डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे इसके बारे में कुछ ना कुछ चाहते होंगे कहना तो 8899904904 इज़ द नंबर वह ना और जल्दी से जुड़ जाइए बन जाइए शो का ऐसा कुछ वक्त बचा है आपकी और मेरी इंटरेक्शन से और उसके बाद मैं आपको कहूँगी अलविदा बराबर 12 से 4 क्या क्रेजी मस्त शो किया है. अभी के लिए बस इतना ही. मैं बस कुछ राग से बाद वापस आऊंगी कहने आपको अलविदा बट फिलहाल के लिए ये आपके पास मौका है कि आप अभी भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं. मैं हूँ अस्रा संतरा ये रेडियो सुना 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: विकिपीडिया पे पढ़ लो।
1: देखिए विकिपीडिया पे मैं हूँ कि नहीं वो तो मुझे मालूम नहीं, बट गूगल करेंगे तो मिल जाएंगी। आरजे असरा इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब कहीं पर भी आपको मैं हाजिर मिलूंगी। देखिए 4 बजे वाले हैं और 12 से 4 क्या मस्त कंपनी थी, बहुत ही ज्यादा मजा आया बस। और आई होप कि आपको भी मजा आया और आपने भी बहुत सारी बातें की मुझसे और बहुत अच्छा लगा। आज के टॉपिक के बारे में सोलो फीमेल ट्रेवलर्स के बारे में बात हुई, क्या है क्या नहीं है, इंडिया की जीत के बारे में बात हुई, यानी कि स्पोर्ट्स सेगमेंट था गेम ऑन। और यूं तो हमारा शो 2 से 4 रहता है, बट आज दीवा वॉज नॉट हेयर तो आई वॉज डूइंग इट फॉर 12 to 4। I know, आपको लगा होगा कि एनर्जी थोड़ी फीकी पड़ सकती है, बट पड़ती नहीं है क्योंकि हम देखिए इतने सिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी पंजाबी हैं कश्मीरी हैं, पर बैटरी तो चार्ज रहती है ना। और आप भी बताइए आपको कैसा लगा है। डेफिनेटली लव फीडबैक्स, यू कैन गिव मी अ फीडबैक ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म RJASRAA। कैसा लगा आपको आज पूरा लाइक हाफ ऑफ द डे यू वर विद मी एंड आई लव टू स्पेंड इट इन द स्टूडियो। मैं वास्तव आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते बस ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए, मजे करते रहिए, मजे ही मजे, और अपना ख्याल रखते रहिए एंड सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

जी आपने ट्यून किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर डुपर रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम रेडियो चिनार, जो कि है हर दिल की धड़कन, और इस धड़कन को धड़का दे हैं भैया आप। खूबसूरत सी शाम है, सुहाना मौसम है, शो चल रहा दिल की बात साहिल के साथ। हाँ जी हाँ, मिलके करेंगे हम अपने दिल की बातें, आप बस बने रहिए हमारे साथ। लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट इज लाइंड अप फॉर यू इन दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्यूजडे इवनिंग। सुनते रहिए रेडियो चिनार, मैं हूँ साहिल मुजफ्फर, लौट के आऊँगा।

Yes, guys, Jilay Zara, this beautiful track on the vocals, Vishal Dhadlani. You're tuned into the hottest frequency of Kashmir, 90.4 FM Radio Chana. Tuesday, aaj aur Tuesdays ko hum baat karte hain about public grievances. Kya kuch hai aapke area mein grievances jo aap highlight karna chahte hain? Ji haan, bataiye hame 8899904904 ya call, WhatsApp, text message karke apni baat tak hum tak pahuncha sakte hain. Hum koshish karenge ki aapki baat ko hum administrative officers tak pahunchaye taaki aapki problems ka solution jaldi se jaldi ho jaye. Filhal in khoobsurat फजाओं में जो आवाज अभी गूंज रही है ये है रेडियो चिनार की, आप बने रहिए हमारे साथ. हम लौट के आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, एंजॉय सम सुपर कूल बॉलीवुड बॉ बैक टू बैक ट्रैक्स, इट्स कमिंग योर वे. जी हाँ, मैं हूं साहिल मुजफ्फर, दिल की बात साहिल के साथ.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं साथ निभाजा। ये है हिमेश रेशमिया की खूबसूरत आवाज। यू आर ट्यून्ड इन टू द हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 90.4 एफएम रेडियो चुनार। शाम का टाइम है, सुहाना मौसम है, आप है, हम है, गर्मी का एहसास है, लेकिन ठंडी हवाएं भी कहीं कहीं चल रही है। बारिशों का अभी ये चलन जो पिछले कई दिनों से है, बहुत जगह पे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। तो जो भी एरियाज, लो लाइंग एरियाज में लोग रहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कॉशियस रहें। जो भी अपर रीच पे रहते हैं, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो थोड़ा कॉशियस रहें। और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टाइमली एडवाइजरीज आ जाती है, वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से है, उनको रिलीजियसली फॉलो करें ताकि हम मिल के कीमती जानें बचा सकें। और ये अभी एक ऐसा वक्त है जब मौसम ने अचानक से करवट बदल ली है, लेकिन उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मौसम ठीक हो जाएगा। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की जा रही है, उनको ध्यान से सुनिए और उन पर अमल कीजिए। गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज देयर ऑन द फोरफ्रंट टू हेल्प ईच एंड एवरी सिटीज़न ऑफ कश्मीर। और हर जगह पे हेल्पलाइन सेंटर्स किए हैं, चाहे पुलिस की तरफ से हो, चाहे फौज की तरफ से हो, या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एवरीवन इज़ ऑन टेंटर हुक्स फॉर द पीपल। सो पैनिक ना करें और अपने जो सरकार है उस पर भरोसा रखें। दे आर देयर अराउंड और वो हर एक चीज़ पे नज़र बनाए रखें। अगर आपके एरिया में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ग्रीवियंस है, कोई ऐसा मसला है जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आज हम पब्लिक ग्रीवियंसिस के हवाले से बात करें। बताए 8899904904 पर कॉल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज करें। साहिल मुजफ्फर नाम मेरा, शो चल रहा है दिल की बात साहिल के साथ। मैं लौट के आऊँगा।

व्हाट अ मेस्मराइजिंग ट्रैक. हाँ, खूबसूरत सा ये ट्रैक. कैसर निजामी, वन ऑफ द रिनाउंड आर्टिस्ट ऑफ कश्मीर, और उनके फर्जंद, जी हाँ, अरसलान निज़ामी और फ़हीम अब्दुल्ला की खूबसूरत आवाज़ें. कोक स्टूडियो भारत का ये रीसेंट एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसने एक अलग ही तरीके से कश्मीरी म्यूज़िक का जो फ्यूजन है उसको इंट्रोड्यूस किया है, एंड पीपल आर लविंग इट. ऐसे ही खूबसूरत से ट्रैक्स आपको सुनने को मिलेंगे ऑनली ऑन रेडियो 90.4 FM. हर दिल की धड़कन, कहीं जाइएगा नहीं भैया जी, रहिए हमारे साथ, बिकॉज हो रही है दिल की बात साहिल के साथ.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

ऑलराइट गाइज, यहाँ पे घड़ी कर रही है इशारा, इट्स टाइम टू रैप अप द शो। उम्मीद कर रहे हैं कि आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। ढेर सारी बातें, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फोटेनमेंट का ये तड़का रहता है जारी हर रोज लाइव 9 to 5, और उसके बाद भी म्यूजिक की गाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं है। आप सुनते रहिए रेडियो चना 90.4 FM, क्योंकि यह है हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, म्यूजिक कंटिन्यू, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह होगी कल मुलाकात। आप अपना रखिए ख्याल।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 एफएम।
2: Chinar Beats with Harsh Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Jerry B. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: ओ मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल ले
3: दिला दीजिए ना।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chunar 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

Ok. Ton mari? Major. Lगता रूम में रह गया।

की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Çınar Beats ve Darce Diva, Anlayan Radio Çınar 90.4 FM.

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हम
1: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
0: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
1: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
0: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
1: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
0: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
1: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
0: रेडियो चुनार 90.4 FM। स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि

0: स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM। मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ

0: एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
2: दिल को
3: करार आ जाए
2: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
2: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
2: सुहानी शाम।
3: सुनिए सुहानी शाम
2: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
1: 90.4
0: एफएम।
4: रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करारा जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दांत कुछ नहीं कहते, मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार लेकिन एक बार।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग म प म ग म प म रे

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: चाहूंगी शोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: चल दिए तन के वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो।
0: सौ बातों की एक बात यही है।
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की फॉरेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: बल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा, छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।

खुशबू फिजा में बिखर जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो, धड़कन जब सुरीली बन जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

गिना जाता था भले लोगों में, सुना जाऊं ऐसी जुबान था, आपसे क्या कहूं, दिल टूटने से पहले मैं भी

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।